चलो या कर सके ऐ पमाना मख नाना मोशिया वटवाते यान हकमो ओ वेन मारक वन लव ये पे हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या हर या